International Yoga Day is celebrated on 21st June every year. It is just more than a fitness trend. It is a global movement for holistic health, mental clarity, and resilience. This year's official theme is Yoga for Healthy Aging. It highlights how yoga keeps our mind sharp, our bodies mobile, and our spirits independent as we grow older. Yoga is truly a lifelong gift that requires no expensive equipment, just your breath and a willingness to show up for yourself. आज का ACT देसी का एपिसोड हम सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा डे को लेकर, और आप सुनेंगे कुछ चीज़ें जो योगा डे को स्पेशल बनाती हैं और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं टू कीप फिट एज यू ग्रो ओल्ड। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है ACT देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम।

एंशिएंट फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो ओरिजिनेट हुई इंडिया में और जिसको सेलिब्रेट किया जाता है अब हर साल एक दिन में, जिसको कहा जाता है योगा दिवस, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओवर बाय पीपल फ्रॉम एनी कम्युनिटी एंड ऑल कम्युनिटीज फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रिलीजन या आप लैंग्वेजेस बोलते हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप माइंड बॉडी और स्पिरिचुअली हेल्दी एंड हैप्पी रहना चाहते हैं तो योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सब लोग फॉलो करते हैं दुनिया में। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को प्रोक्लेम किया एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करने के लिए हर साल, और तब से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। और हम सब देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके योगा एज अ प्रैक्टिस और योगा एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जिससे आप अपनी दिनचर्या में अगर इन्वॉल्व कर लें तो आप फिजिकली नहीं मेंटली एंड स्पिरिचुअली भी फिट रह सकते हैं। The essence of yoga is balance, not just balance within the body or mind and body, but between the spiritual and physical well-being. And human relationship is also a part of that well-being, because agar aap physically and mentally well-being या अपने आप को हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप्स भी सफर करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर एज अ रोल दैट इट प्लेज फॉर द ओवरऑल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद इन देमसेल्फ एंड इन द एक्सटेंडेड कम्युनिटी। आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो।

इज नॉट जस्ट अबाउट अ फिटनेस ट्रेंड. आजकल आप देख रहे होंगे कि इवन डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग दैट माइंडफुलनेस और थोड़ा सा टाइम अपने लिए लीजिए ताकि आप अपनी ब्रेथ कंट्रोल करें, चाहे आप यू नो कॉन्शियसली एफर्ट लें अपनी लाइफ को टर्न अराउंड करने में, ताकि आप अपनी जो दिनचर्या है उसको और थोड़ा सा अच्छा बना सकें. इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है और व्हाई दिस डे मैटर्स इज बिकॉज इट इज़ अबाउट ग्लोबल यूनिटी. इट यूनाइट्स मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस कल्चर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स इन अ शेयर्ड प्रैक्टिस ऑफ वेलनेस. इट इज़ अबाउट होलिस्टिक हेल्थ. इट शिफ्ट्स द ग्लोबल कॉन्वर्सेशन फ्रॉम जस्ट ट्रीटिंग इलनेसेस टू एक्टिवली प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम यू नो अकरिंग थ्रू फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस. और मेंटल रेजिलियंस जो आजकल के टाइम में एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग और द अदर अराउंड अस, वी सीइंग लॉट ऑफ ग्लोबल चेंजेस हैपनिंग, यू नो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल लाइफ चेंजेस. सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट मेंटल रेजिलियंस एंड डिवेलपिंग दैट. सो इट प्रोवाइड्स एक्सेसिबल scientifically proven tools to combat modern crises like burnout, anxiety and depression, as I said, and it is also about universal accessibility. It does not require any, you know, expensive equipments. It does not require a lot of physical space. It can be done at the comfort of your home, in your office, or any, literally any space in the nature. You can just practice this anywhere, anytime and any place. 2026 की थीम के बारे में हम बात करेंगे, क्या है इस थीम के ऊपर और क्यों ये स्पेशल है इस साल. इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए एसीडी देसी, मेरे यानी आपके अपने देसी आज विकास के साथ, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया. हैप्पी योगा डे विच इज कमिंग दिस 21st.

कैनबरा में तो बहुत ठंड है, और ठंड को भगाने के लिए एक तरफ जहां मैं योगा की बात कर रहा हूं, वहीं मैं ऐसे गाने प्ले कर रहा हूं जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा डांस कर सकते हैं और अपने वीकेंड को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं।

Whether you are practicing yoga for 5 minutes or an hour every day, you are part of a global community breathing in unity. So how are you celebrating Yoga Day this year? Just drop in a few comments on my social media feed on Facebook या Instagram पे जाके भी आप डाल सकते हैं कि क्या आप special कर रहे हैं इस योगा दिवस पर. 2026 की थीम है Yoga for Healthy Aging and it highlights how practicing maintains mobility, cognitive function and independence later in life. बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, लेकिन जिम में जाना, उसमें एफर्ट डालना या इक्विपमेंट्स घर में लाना और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो थ्रू करना भी एक टास्क है आजकल के डे टू डे बेसिस में. तो योगा उस चीज़ के लिए हेल्प करता है आपको कि आप दिन में कोई भी टाइम उठाएं सुबह या शाम और 5 से 10 मिनट या अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा भी स्पेंड करना चाहते हैं. द मोर यू स्पेंड टाइम इन यू नो डूइंग योगा द मोर यू विल बेनिफिट. 12 साल पहले यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज किया था 21 जून को एज योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, और इस साल इट मार्क्स ओवर अ डेकेड ऑफ ग्लोबल मूवमेंट शोकेसिंग अ मैसिव शिफ्ट वेयर एक्चुअली डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड आर नाउ एक्टिवली प्रिस्क्राइबिंग और सब्सक्राइबिंग टू योगा एंड टेलिंग पीपल टू प्रैक्टिस इट फॉर देयर प्रिवेंटेटिव मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स. अगर आप भी योगा को लेके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या फिगर्स शेयर करना चाहते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी थ्रू माय फेसबुक पेज और यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम और यू कैन जस्ट राइट टू मी थ्रू माय ईमेल आईडी विच इज़ actlikedesi@gmail.com. मुझे आपके सुझावों और सवालों का या आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल और एनी काइंड ऑफ हेल्थ पे अपना ध्यान दें ताकि आप एक सुचारू और हेल्दी लाइफ स्पेंड कर पाए.

इंजॉय कर पाए वो सब मेहनत जो आप अपने ऊपर स्पेंड करते हैं पैसा कमाने में, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में. कीप प्रैक्टिसिंग योगा, कीप प्रैक्टिसिंग समथिंग टू कीप योरसेल्फ मोबाइल एंड एक्टिव.

चाहता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर योगा के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इट्स जस्ट नॉट एन एक्सरसाइज और अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस दैट इज यूजफुल फॉर बोथ फिजिकल मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल वेलबींग. तो आप जरूर इसके बारे में थोड़ा और जानिए, बिकॉज इट्स एन एंशियंट आर्ट फॉर्म, इट्स एन एंशियंट प्रैक्टिस बींग यू नो फॉलोड बाय मेनी प्रैक्टिशनर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा, और इसके बारे में अगर आप जितना जानेंगे और आपको शायद फायदा ही मिले. तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा, कीप हेल्दी, कीप फिट, stay calm and act desi. Shubh Ratri, Shabba Khair.